इश्क में अच्छा नहीं लेता रहे तू मेरा इम्तिहान, कहीं ऐसा ना हो जिस्म से निकल जाए ये जान।

रोते रहे जिंदगी के समंदर में तूफान बवंडर खूब गए, सोचा था साहिल पे मुस्कुराएंगे किनारे पे आ

तेरे होते हुए भी आज मेरा प्यार मुझसे जुदा है। मैं क्यों और कैसे मानूं, मैं कैसे कहूं तू खुदा है।

बस यही तो किया था कि हम जरा हौसला मंद हुए, फिर जिंदगी के दरवाजे क्यों हमारे लिए ही बंद हुए।

पैर थकेंगे, आंसू बहेंगे, जिंदगी में किसको मिला आराम है, न सोच सफर अभी कितना है, बस चलते रहना तेरा काम है।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ है ये दिल की बात साहिल के साथ। Only on Radio Chennai 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: हाय मैं हूँ आरजे ज्यूस।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीबा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिडार 90.4 FM हर दिल।

आईना देख के बोले ये संवरने वाले अब तो बेमौत मरेंगे मेरे मरने वाले।

हाय हमें यूं देखना, ऐसा ना हो बदनाम हो जाए, ये मुमकिन है इसी का कल्प।

और दिल के धड़कन रेडियो चैनल 90.4 एफएम एंजॉय कर रहे हैं मजेदार शो व्हाट्स अप Yes, baby, there's nothing like control when radio channel is on. Pump up the volume because this show for next 3 years. I'm here. What's up with Jaxius? Radio channel ki hottest frequency par Jaxius ke saath mazedar show. What's up? Ji haan, apne follow, share, subscribe karna kahe. Radio channel ko Facebook, YouTube, Instagram expert. साथ ही डाउनलोड करें हमारा ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर ऐप स्टोर से डाउनलोड करते ही आप हमें सुन पाएंगे लाइव दुनिया की किसी भी कोने में مزید معلومات کے لیے پلیز لاگ ان ٹو www.radiochinar.com ہر دل کے درد کا ریڈیو چنار جاکسز سے درگاہ دے رہا ہے

0: कौन आया?
1: रेडियो चिनार, रेडियो रेडियो चिनार, वेदर अपडेट, वेदर अपडेट।
2: जय करे आप मजेदार शो व्हाट्स अप ओनली ऑन रेडियो चिनार 90.4 एफएम और व्हाट्स अप शो पे ब्रदर आज का वेदर।
1: रेडियो चिनार, रेडियो रेडियो चिनार, वेदर अपडेट, वेदर अपडेट।
2: यहाँ कल के मुकाबले 5 डिग्री कम, आज का मौसम होने वाला है कतई आसम।
1: रेडियो चिनार, रेडियो रेडियो चिनार।
2: कल 30 आज रहेगा मैक्सिमम टेम्परेचर 25, इज मोस्टली क्लाउडी फॉर टुडे। सूरज को बादल ढकते रहेंगे और दोपहर होते होते देर और चांस कि बादल बरसेंगे भी।
1: वेदर अपडेट, वेदर अपडेट।
2: बादलों और सूरज के बीच में चलती रहेगी घमासान, लेकिन मेरी जान अगर आप घर से जा रहे हैं बाहर तो प्लीज मेक श्योर एन एक्स्ट्रा लेयर कैन कीप यू ड्राई एंड अवे फ्रॉम द कोल्ड। अभी के लिए यूवी इंडेक्स वेरी वीक पर ह्यूमिडिटी 69, विंड स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर, विजिबिलिटी 9 किलोमीटर। आज का सनराइज हुआ 6:31 पर, आज का सनसेट होगा 6:08 पर। और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन धड़काते रहो।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: जूस।
1: कौन आया?
2: वायरल है तभी व्हाट्सएप पे है।
3: व्हाट्सएप पे
2: तभी
4: वायरल ऑन शो व्हाट्सएप।
5: रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर वायरल है तो व्हाट्सएप पर आ ही जाएगा। वायरल ऑन व्हाट्सएप एक ऐसा सेगमेंट जहां पर जो वायरल रहता है हम पहुंचाते हैं आप तक। तभी तो कह ज्ञानी लोगों ने भी ये बातें मानी कि जानी वायरल है तो व्हाट्सएप पर आ ही जाएगा। वायरल ऑन व्हाट्सएप में आइए बात करते हैं ओडिशा की। ओडिशा में एक ब्लड बैंक ऑर्गेनाइज किया गया जहां पर एक नहीं दो नहीं दस नहीं बीस नहीं हजार दो हजार नहीं बल्कि 8,810 ब्लड पेंट्स कलेक्ट किए एक दिन में। इसे डिक्लेयर किया गया वर्ल्ड रिकॉर्ड और ये जो इवेंट है इट वाज हेल्ड ऑन सितंबर 17 टू मार्क पीएम मोदी 76th बर्थडे। जी हाँ, ऐसा प्यार ऐसा सम्मान सिर्फ देख सकते हैं हम अपने देश भारत में। और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चुनाव से डायरेक्ट मेरे यार धड़काते रहो।

0: हाय मैं हूँ आरजे सियू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीबा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 एफएम हर दिल की धड़कन।
4: दोस्तों हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 एफएम शो व्हाट्सअप और व्हाट्सअप शो में आज का कोट ऑफ द डे। आज का कोट कहता है इफ आई नो व्हाट लव इज इट्स बिकॉज ऑफ यू। और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चुनाव के साथ मस्तार शो व सबसे रेहत मेरी जान धड़काते रहो।

पहली बात तो ये जो तू टिकटॉक टिकटॉक चलती है, माना ये सारी तेरी हाई हील्स की गलती है। रुक तो जा तू हैंग ऑन, ये तो बता तू है कौन, कहां से आई है कहां को जाएगी, पागल लड़की मुझे मरवाएगी।

0: जूस
1: कौन आया?
2: जूस
3: रेडियो 90.4 एफएम पर मजेदार शो व्हाट्स अप, मैं हूँ जूस और दोपहर के 2 बजे तक आया मैं इन स्टूडियो तो ये कि पन कथा इस तरह बात नहीं पन दिलो खाल बोए नंबर छ में 8899904904 यत नंबर पर तो कॉल है क्योंकि व्हाट्स अप या टेक्स्ट मैसेज और व्हाट्सएप शो और व्हाट्सएप शो में हमारे साथ साइमा जुड़ी हैं। दिखती हैं साइमा कि सर मजा आया कल आई फील गुड सुन के, सुन तो रही थी पर उस टाइम पास पे नहीं कर पाई, नाउ अब यह है कि मजा आ रहा है ये शो सुनकर भी, तो मजा लीजिए। कितने सारे शो चलते हैं, हंगामा, दिल की बात साहिल के साथ, चिनार, बीट्स, बीट्स ऑन रिपीट विद आरजे दीवा और कितने सारे ऐसे शोज हैं जो आप सुनना पसंद करते हैं, वीकली शोज, डेली शोज और शोज पे शो, शोज पे शोज, सबको प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच साहिबा हमसे जुड़ने के लिए। आरिफ हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं आरिफ आज गेड़ी मारने निकला, अरे वाह पंजाबी सीख ली पाजी ने, और पाजी आज निकले गेड़ी मारने और रेडियो चिनार को फुल वॉल्यूम पे। देखिए मैं गेड़ी समझता हूँ आप एक्साइटेड है, ये भी समझता हूँ आपको रेडियो चिनार से प्यार है, लेकिन फुल वॉल्यूम पर बजाना समझदारी नहीं है क्योंकि वॉल्यूम इतना ही होना चाहिए ताकि आस पास भी एम्बियंस आपको हॉर्न्स वगैरह सुनाई दे। सो गॉड ब्लेस यू, ड्राइव सेफ और मजे ले लेकर गेड़ियाँ मारो तुस। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। 8899904904 इज द नंबर जो आपके दिलों के तार हमारे दिलों से जोड़ता है। फिलहाल गो इस टॉपिक, आज हम बात करने वाले हैं पैन इंडिया सिनेमा की। अब जब भी हम पैन इंडिया सिनेमा या खाली सिनेमा सोचते हैं तो हम सोचते हैं बॉलीवुड, लेकिन बॉलीवुड के अलावा भी कितनी सारी ऐसी लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज जिनमें मूवीज रिलीज की जाती है। एंड पैन इंडिया सिनेमा इज टू वास्ट, टू बिग, टू ह्यूज, टू एनॉर्मस, एनॉर्मस। और ये जो पैन इंडिया सिनेमा है आज हम आपको उसी के बारे में बताने वाले हैं। वैसे पैन इंडिया सिनेमा की अगर हम बात करें तो ये जो पैन इंडिया सिनेमा है इट केम इन टू द लाइक बिगर पिक्चर, इट केम इन टू द मोमेंटम व्हेन बाहुबली वॉज रिलीज 2015 और उसके बाद 2017 में कंक्लूजन। एवरीबडी वॉज आस्किंग बात इसके बाद चमाल जी पाइए काटापन क्या जो सी बाहुबली मोर बट इट वॉज ट्रेंडिंग एवरीवेयर। 2 साल तक इंतजार कर कर के जनता थक गई और जैसे ही बॉलीवुड ने देखा कि भैया ये जो तेलुगु है, तेलुगु फिल्म मतलब इतना डोमिनेट कर रही है, तो उन्होंने भी ट्राई किया बट हुआ नहीं, आज तक हो नहीं पा रहा उनसे। बॉलीवुड का भी ये है कि कर रहे हैं अपने हिसाब से, लेकिन जब हम पैन इंडिया सिनेमा की बात करते हैं तो आज का टैलेंट जो है भर भर के बाहर आ रहा है और उन्हीं टैलेंटेड लोगों की आज हम बात करने वाले हैं। रेडियो 90.4 एफएम मजेदार शो व्हाट्सएप शो में टॉपिक पैन इंडिया सिनेमा। मैं हूं जॉक्स्यूस, याद रखिए आप डीएम भी कर सकते हैं शो का हिस्सा बनने के लिए JOCKXEUS जॉक्स्यूस के नाम से मिलूंगा इंस्टाग्राम पर। और दिल की धड़कन रेडियो चैनल से डायरेक्ट धड़काते रहो।

Chinar Beats with RJ Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ। दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हाय मैं हूँ आरजे सियू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM हर दिल की।

दोस्तों हर इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन आप एंजॉय कर रहे हैं मस्तार शो व्हाट्सअप व्हाट्सअप शो में अगली पेशकश टिकटॉक्स एंड बॉलीवुड न्यूज़। जी हां, टेक दुनिया से अपडेट से लेकर बॉलीवुड की तड़कती फड़कती खबरें आप तक पहुंचाई जाएंगी। जरा सा इंतजार देते रहे प्यार, हर दिल की धड़कन को धड़काते रहो मेरे यार। मैं हूं जॉक्स रेडियो चैनल की हॉट फ्रीक्वेंसी पर मजेदार शो व्हाट्सअप से डायरेक्ट मेरी जान धड़काते रहो।

Yeah, that's the Radio Channel 94.4 FM show. What's up, show me Bollywood news and Bollywood news is about Salman Khan. जी हाँ भाई, चल भी दे तो बन जाती है खबर और खबर ऐसी कि ट्रेंडिंग हो जाता है मामला. वही बॉलीवुड न्यूज में आइए बात करते हैं सलमान खान के लेटेस्ट न्यूज अपडेट की. जी हाँ, फिर से रिवाइव किया जा रहा है 2004 को, जब सलमान खान एंटाइटल किए गए थे एज हैंडसम मैन इन द वर्ल्ड. जी हाँ, 7th हैंडसम मैन, मोस्ट हैंडसम मैन इन द वर्ल्ड, और वही इंडिया के मोस्ट हैंडसम मैन करार दिए गए थे. सलमान खान आज 59 साल के हैं और आज भी प्रीटी फिट एंड यंग दिखते हैं. और वही अगर हम देखें तो अट्रैक्शन से लेकर अटेंशन ग्लोबली इंटरनेशनली मिलती है सलमान खान को. अब जिंदगी का मजा लेना तो कोई सलमान भाई से सीखे. हॉट इस फ्रीक्वेंसी, हर दिल की धड़कन रेडियो चुनार. मैं हूं जॉक्स, सिरे हक धड़काते रहो.

0: मैं हूँ आरजे सूरज।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीबा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिरार 90.4 FM हर दिल की धड़कन।

0: Kom maar, ja.
1: Tech Talks.
2: With RJ Zeus.
3: Regional 90.4 FM up enjoy kar rahe Mastar Show WhatsApp show ka segment Tech Talks. WhatsApp show mein aaiye karte hain tech ki baat. Tech Talks mein aaiye aapko bata dein ki kahan pahunchi hai hamari technology. Scientists have reportedly grown living human skin directly on a robotic fingers. जी हाँ, अब ये जो गठजोड़ बिठाया है, क्या गठजोड़ बिठाया है, अब डायरेक्टली ह्यूमन स्किन को रोबोटिक फिंगर पर ग्रो करना, और आप समझ सकते हैं इससे जो रोबोटिक फिंगर है बिल्कुल इंसानों की तरह दिखेगी. एंड दिस इज अ स्ट्राइकिंग एग्जांपल ऑफ हाउ बायोलॉजिकल टिश्यूज एंड रोबोटिक्स कैन बी कंबाइंड. और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चुनाव 90.4 FM बातचीत जारी है. अब बने रहें, सुनते रहें, धड़काते रहें.

0: कौन आया?
1: सो फ्रेंड्स, वक्त हो चला है कि आज के लिए आपसे इजाजत ले। इजाजत लेने से पहले बता दूं आपको कि आपसे जुड़ने वाली है आज से दीवा लेकर शो चिनार बीच। जी हाँ, चिनार बीच का सफर बीट्स ऑन रिपीट आप एंजॉय करने वाले हैं कुछ ही देर में, और मेरी मुलाकात कल आपसे होगी 9 से 12 बजे तक। तब तक के लिए इजाजत है, एंड रिमेंबर टिल वी मीट अगेन, कीप योर हेड्स हाई, वॉक टॉल एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट आई लव यू ऑल। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, खुशबाश, मासलामा।

Chinar Beats with Harshi Deva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

हाय हाय स्लो मोशन में मैं भी आ गई। देखिए यहाँ पे मैं हूँ मौका स्टोरी का जाने का उजर बस शो का ही समझ जाए शो चुनार बीट्स बीट्स ऑन रिपीट हॉरस फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चुनार 91.4 एफएम।

0: Chinar Beats with Dhar Chetiba, only on Radio Chinar 90.4 FM.
1: हूँ आरजे असरा और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM।

नहीं करते। अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे, बोलेंगे जरूर बोलेंगे, क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर, एवरी वेंसडे एंड सैटरडे, रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चनार 90.4 FM।

0: हाय मैं हूँ आरजे ज्यूस।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीबा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिरार 90.4 FM हर दिल।

शो टुनार बीट्स और डे सारी बातें हो रही है अभी के लिए, और आप ही शो का हिस्सा बन सकते हैं 8999 जो फोर पर कॉल करके रेस व्हाट्सएप कीजिए और शो में किस बारे में बात होगी बस कुछ ही टाइम के बाद मैं आपको टॉपिक

तो बताऊंगी कि किस बारे में हम बात करने जा रहे हैं। फिलहाल के लिए आप ही हैं, मैं भी हाथ को जाएगी, अभी बातें हैं, आप हैं, मैं हूँ, आ गए दूर है कहाँ जाने का हजूर, जल्दी से शो कैसा बन जाए 8999049048 व्हाट्सएप कीजिए शो चुनाव बीस कैसा बन जाए।

0: हाय, मैं हूँ आरजे ज़ूस और आप सुन रहे हैं रेडियो चनार 90.4 एफएम।
1: She has absolutely no idea. Let's go.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ। दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

मेरा अभी तो आया है घर का जाने का टाइम, और मैं जा रही हूँ और असरारिया के साथ जुड़ने जो हंगामे पर, तब तक हमने ख्याल रखना अपना, और मैं तो चली अपनी गली, और हम मिलेंगे कल 12 बजे। ख्याल रखिए और सुनते हो, देखते रहिए रेडियो चुनाव 91.4 FM। आप डिजिटली देख सकते हैं, और अभी आप मुझे सुन रहे हैं तो सुनते रहिए रेडियो चुनाव 91.4 FM।

0: खामोशियाँ। जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

देखिए दीदार तो बराबर 2 बजे शुरू हुआ था, 2 से 4 यूजुअली हंगामा होता है, बट आज वेंसडे था तो 2 से 2:30 तक रेडियो गर्ल्स, और अभी शो शुरू हो चुका है हंगामा। बहुत सी बातें, बहुत कुछ है, क्या एंटरटेनमेंट इन्फॉर्मेशन, उसके अलावा क्या बजिंग है, लाइफ का ऐसा फिलोसफिकल टच जो सिर्फ और सिर्फ यही मिलता है। मैं मास्टर सुनते रहिए रेडियो सुनार, कुछ ही ट्रैक्स के बाद में वापस आऊँगी ढेर सारी बातें करने।

0: हाय, मैं हूँ आरजे दीवा और आप सुन रहे हैं रेडियो चनार 90.4 FM।
1: ओ मैंने एक मोटरसाइकिल दिला दो ना।
2: कुछ और मंगला ना, मोटरसाइकिल ले
3: दिला दीजिए ना।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दीवाना है ये दिल की बात साहिल के साथ। ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हाय मैं हूँ आरजे ज़ू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीबा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिड़ार 90.4 FM हर दिल।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक
2: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

Waves with Harshadeva, only on Radio Channel 90.4 FM.

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: Chinar Beats with Harsha Deva, only on Radio Chinar 90.4 FM.
1: हूँ आरजे असरा और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: दिल को
4: करार आ जाए
3: जब भी आए
4: सुहानी शाम,
3: दबी यादें महक जाए
4: जब भी आए
3: सुहानी शाम,
4: सुनिए सुहानी शाम
3: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
4: 90.4 FM।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया, वो छूट जाएगा।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM। दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM। रेडियो चिनार 90.4 FM पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।

अरे तो लो भैया हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।

और मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।

0: रेडियो चिनार 90.4 FM पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।
1: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, हिर लो पान चबाए। आहा,

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
2: 90.4
1: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

तमाशा दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको तो आप कुछ नहीं कहते, मगर मगर

दिन, चैन, आराम, रातें, सुबह, दोपहर और शाम, छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं, सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं, देखो ना दर्द, हिस और जख्म दे जाते हैं, तो आप कुछ नहीं कहते हैं।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM। दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: कुछ नहीं चलेगा।
1: अरे अरे लेकिन लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो, एक बार लेकिन एक बार।

0: बता दूं? वो यहीं पर।
1: यहीं?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: आप जानती हैं हम क्या गा रहे हैं?
1: मैं इतना भी नहीं समझूंगी, आप ही ने सरगम सिखा रहे थे।
0: आपको तो नहीं सिखा रहा हूँ, आपने तो अपने बाबूजी से सीखा होगा। हाँ तो कहाँ तक पहुंचे थे हम?
1: पंचम तक।
0: कैसे? कहिए ना।
2: सा सारे का तमा पा पा मगा तमा पा पा मरे मागा।
3: हाँ सा

0: सवरिया, होय होय ओ तेरी तिरछी नजरिया,
1: ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया, होय ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया, होय होय होय ओ जाने सारी नगरिया,
0: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कतरिया, ओ सवरिया।

0: आए करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुदन तीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ।

0: साबुन की शोर बचाओ ओ मुए ओ मुर्गे ओ कौवे, पीछे पीछे आते हो क्या दिल के चोर, मान जाओ वरना मचाऊंगी शोर।
1: पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़, हो गोरी हो नटखट हो खटपट हो पनघट हो झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़।
0: तोरे नैना ओ मीठे बहना, और तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना हाय हाय, मुझको बना दे बावरिया, आके सीधी लगी दिल पे जैसे खतरिया ओ सवरिया।

0: अब तुम्हारा नहीं है वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: हम थे वो थी, वो थी हम थे,
2: हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, तारा रा रा रा। जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, हे याने याने याने प्यार हो गए।

धीरे धीरे मैंने खींचा आहा, घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा मैंने खींचा आहा। हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया। बाजू।

0: यूं ही साथी
1: है बंदी मुट्ठी लाख की
2: और रेडियो चुनाव की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: अरे बंदी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: से जो समझाए उसी की मची धूम आ जो समझाए उसी की मची धूम
1: hey! जो समझा उसी की मची धूम जो समझा उसी की मची धूम
0: बाजू।

खुशबू फिजा में बिखर जाए तो समझ लेता हूँ कि तुम हो, धड़कन जब सुरीली बन जाए तो समझ लेता हूँ कि तुम हो।

इस जमाने में तेरे सिवा तू ही बता कौन था अपना। अब ना ही कोई उम्मीद, ना ही आंखों में कोई सपना।

यहीं पे तुमको जन्म मिला है, यहीं पे तुम्हारा दम निकलेगा। देख लेना एक दिन सारी दुनिया का आसमान कम निकलेगा।

इसके हर मोड़ पे एक नई कहानी, एक नया किस्सा है। पढ़ाओ दर पढ़ाओ, जिंदगी का सफर ही कुछ ऐसा है।

0: आते।
1: गुजर बसर अब दिन रात उसके दिल में मेरा है, खबर ये भी ना रहा क्या उसका क्या मेरा है, करवटें लूं तो आहिस्ता।